0: करूँगा मार। हथौड़े की यह करूँ मार, करेगी ये पकड़ूँगा मार।
1: नवतार
0: पकड़ूँगा मार, करेगी ये पकड़ूँगा मार।